0: पंखे लगी ले थ्रूजा इस टॉप उसी को सिक्स लाइक नो वन एल्स.
1: Oh, 엄청 계려라, 아마 진짜.